0: ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म अद्यद्देवता ब्रह्म इत्यार्षं गायत्रं छन्दं परमात्मं स्वरूपम् आयुज्यं विनियोगः अ उ अम् ओम। ओंकार में तीन अक्षरों के योग है, लेकिन उच्चारण करते समय अल्र के वो एक ही एयोंग है। अयोच भारतीय साया वारट
1: में ओम ही
0: लन
1: भारतीय
0: सुमता न्यामंग ननम भारतीय भन्ने आध्यात्मिक घड़ादशे जब गदादशे
1: एक
0: खा छा ठा ठा चटतव ओंकारश्चाधर कपय भावेरो श्रमण पुरा।